सतगियो गुरु रामदास आमता उर्वरा गुरु रामदास आमता उर्वरा जहां मान अकली में सिद्ध को सभा जहां मान अकली में सिद्ध को सभा

करुणालय है अर्थालय है खलखंडन है महमंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो।

अष्टपदी। जय मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाप्यान दूत जम दलै, तै केवल नाम संग तेरे चले। जय मुश्किल हो वै अत पारी, हर को नाम खिन माए उतारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोड़ी बंधन परे, हर का नाम जपत निस्तर। अनक माया रंग तिख न बुझावे, हर का नाम जपत आकावे। जय मार्ग इहो जात अकेला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा ते आये, नानक गुरुमुख प्रमगत पाईये। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तै पार पराही। अनक बिगन जे आए संकार, हर का नाम तत्काल उतार। अनक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हो मैला मल कबू न तोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाईये साध के संग। जय मार्ग गे गने जाहे न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा। जय पैड़े महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तै नाल पछानू। जय महाप्यान तपत बो काम, तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम। जहां तिरखा मन तुझे आकर खै, तै नानक हर हर अमृत बरख। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जनकोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औगत साध कमात। हर जन के हर नाम नितान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग एक है, नानक जन के बिरत विवेक है। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग। हर का नाम जन की बड़ियाई, हर के नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजय हर हर देवा। हर हर जन कै माल खजीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे। हर की भगत मुक्त बो करे, नानक जन संग केते तरे। पार जाते हो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रित वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग विड़ पागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है।

साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण कीत। जिस शब्द अंदर सतगुरु जी सानू जोत दी पहचान दसते ने, पर तुसी तको साहिबां दा इतिहास पढ़ के कि साहिबां नू बचपन विच ही कितनी लगन सी। कहिंदे ने जदों बच्चियां नाल खेलदे प्रभु भगती दियां गल्लां करदे ते बच्चे कठे होके सतगुर दे इर्द गिर्द बह जांदे। साहिब जी सानू भी उस मालिक दियां गल्लां सुनाओ। कहिंदे ने सारा सारा दिन बीत जाना, उन्हां बच्चियां ने सतगुर दे मुखो मिठे मिठे बोल सुन के अपने घर जाना भी भुल जाना। ते जिस वेले रात पैनी सतगुरु जी ने भैन जी नूं बेनती करनी, भैन जी ना तां मेरा चित करदा कि इन्हां बच्चियां तों दूर होवां ते ना ए बच्चे मेथों दूर हुंदे ने, ते तुसी किरपा करो रात दा भोजन असीं कट्ठे ही छकांगे कट्ठे ही खावांगे, तुसी इन्हां लई भी भोजन तैयार कर लो। सो कहण तों भाव सतगुरु ने केवल ए बचन आख्या नहीं, पहले बचन नूं कमाया कि सब अंदर परमात्मा दी जोत नूं वेखण। छोटे छोटे बाल जो नगर दे विच रहण वाले ने, ओ जे घर विच आ के बह गए ने ते इको जगह बैठ के प्रसाद छकना है, किसी प्रकार दा कोई पिन पेत नहीं रखना। इसलिए साहब कहिंदे ने भाई आओ आपां जोत वेखीए,

कि भाई इस संसार विच जेड़ा भी मनुख आया है उस अंदर जोत एक परमात्मा दी ही है, क्योंकि जोत तो बिना कोई भी इंसान नहीं है। धन गुरु अमरदास पातशाह का उपदेश है, ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी तां तू जग में आए। ए गल वखरी है कि आपा जोत देख नहीं रहे, पर जोत तो बिना कोई भी नहीं, सारिया अंदर जोत परमात्मा दी है। हुण जोत नजर क्यों नहीं आउंदी, पांडे ने सवाल कीता, पातशाह जे सारिया अंदर जोत है ते जोत नजर क्यों नहीं आउंदी। साहिब कह लगे, पांडा जी गल इंज है कि दुनिया दे लोकां ने जात दी दीवार इतनी वड्डी कर दित्ती है कि सानू जोत नजर नहीं आउंदी। हुण जद सामने दीवार ही खड़ी हो जाए जोत किवें नजर आवे। कहिंदे ने जोत है अंदर, पर इसे अंदर एक होमे दी जात दी दीवार भी खड़ी होई है। जद तक वह दीवार नहीं गिरदी जोत नजर नहीं आउंदी, क्योंकि जोत तो अंदर ही है ना, बाहर नहीं है, जोत अंदर है। पर उस जोत नूं प्रगट करना है। वो जोत प्रगट किवें होवेगी? साहिब कहिंदे ने जात ना पुछ, जोत दी पहचान कर। ते जोत दी पहचान ता हो सकती है, आपां पहले जात भुल जाइए, आपां जात नूं छड़ दईए, ऊंच नीच छड़ दईए, अमीर गरीब छड़ दईए, वड्डा छोटा छड़ दईए। कते मन च ऐसा ख्याल ना आवे, कहिंदे ने फिर जोत दी पहचान हो सकती है। साहिबा ने बाणी विच

बचन धन गुरु नानक पातशाह कह रहे ने हुण तुसी ए देखो गुरु साहिबान ने कहा नहीं बल्कि इस नु कर दिखाया है हुण करके भी ऐसा दिखाया है कि मेरी निगाह अंदर केवल जोत नु थां है जात नु बिल्कुल नहीं मैं जात नु मनदा ही नहीं केवल जोत क्योंकि मनुख दे अंदर जोत है ते मैं केवल जोत दी पहचान दसी है हे गुरसिख तू जिदे अंदर वेखे जोत वेख क्योंकि जे परमात्मा ने तेनू संसार विच भेजे है ते अपनी जोत टका के जे तेनू अखां दित्तियां ने ते केवल इसे लई कि तू परमात्मा दी जोत ही वेखे मैं नहीं चाहना तू होर कुछ वेखे केवल परमात्मा दी जोत ही वेखे अज साडे अंदर फर्क क्यों पिया असी जात वेखने आ परमात्मा कहिंदा जोत वेखो जात तकने आ जोत नजर नहीं आउंदी जोत छिप जांदी है इसलिए आपां हुण जोत दी पहचान किवें करनी है गुरु नानक पातशाह अगे बेनती करिए पातशाह तुसां ने जोत वेखी है तिस भी तुहाडे सिखां साडे ते भी करो कृपा असी जोत वेख सकी साध संगत इको नगर दे रहण वाले धन गुरु नानक पातशाह इत्थे ही रहने वाला ऐसा एक मनुख एक व्यक्ति जिन्हों गुरु नानक पातशाह ज्यादा मिलते कहते पुरखा सुना की हाल है किधर चले हैं की काम करना है कह लगा महाराज काम की करना है मैं लोकां दी उस्तत करना ना की है तेरा कह लगा जी दाना साहब कह लगे तेनू पता है दाना किनू कहिंदे ने कहिंदे नहीं महाराज कहिंदे ने दाना कहिंदे नू सियाणे नू बुद्धिमान नू कि तू सियाणा हो के उस्तत लोकां दी करने आ मैं तेनू सच्चे मालिक दी उस्तत करनी दसा कहन लगी पातशाह तुहाडा मेरा मेल नहीं हो सकना तुसी बेदी कुलभूषण बेदी अंश विचों ते मैं एक छोटी जी जात विचों तुहाडा मेरा संग किवें हो सकदा है साहब कहणगे क्यों नहीं हो सकदा मैं तेरी जात ते नहीं पुछी ना तेरी जात वेखी है मैं ते तेरे अंदर जोत वेख के आवाज दित्ती है जिहड़ी तेरे अंदर जोत है ना बड़ी निर्मल है तेरे मेरे विच अंतर की है आ दानिया मैं तेनू दाने तो मरदाना बनावा सोई मर्द मर्द मरदाना दाने तो मरदाना बना दिता कहन लगी पातशाह साडे विच दूरी उतनी ही है ओदे विच फर्क नहीं पिया दाने तो केवल मरदाना बनाया गल नहीं बनी जात दी दीवार उत्थे ही खड़ी है साहब कहन लगे भोलिया मैं भी गरा दिना दाने तो मरदाना ते मरदाने तो भाई मरदाना अज तो तू मेरा भाई होया लै हुण तेरे ते मेरे विच अंतर काई ना है तू मेरा भरा बन गए तू ते मैं एक हो गए मैं जात दी दीवार भी गरा दिती है अज मैं तेनू अपना भरा बना लिया क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने कहा नहीं बल्कि ऐसा कर दिखाया सतगुरु दी बाणी है

हे परमात्मा, मरण तो बाद मुक्ति किन्नी वेखी है, मुक्ति देनी आ ते जिउंदियां दे, जिउंदियां मुक्ति चाहीदी है मरण तो बाद नहीं। ते ए पंडता ने जो मेरी बेपती कीती है मेरी नहीं तेरी है, क्योंकि मैं तेरी भगती करन आया मंदिर विच, इन्हां मैनू चुक के बाहर मारे है। कहिंदे ने अकाल पुरख कोलों बर्दाश्त

जितनी भी तारीफ जितनी भी उपमा कीती गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी दी अखी नजारे देखे। एक दिन दा जिक्र है हजूर दीवान दे विच सुशोभित हन हरि कीर्तन विच संगता गड़ुच होईयां गुरु चरणा विच जुड़ियां अमृत रस कीर्तन सरवन करके अपना जीवन सफल कर रही हैं। एक प्रेमी आया मत्था टेकिया चट बार चला गया। थोड़ी देर बाद फिर सतसंगत दिया दबीजा टप के अंदर आया फिर मुड़ गया। हजूर ने मेवड़े शिख नू भेज के इस प्रेमी नू बुलवाया। कीर्तन की समाप्ति तो उपरांत हजूर पुछन लगे भाई प्रेमिया तू सत संगत विच बहना चाहुंदा सैं बैठ नहीं सी रहा इसका की कारण है। ता इस प्रेमी दे नैन कटोरे भर आए हाथ जोड़ के बेनती कीती ओ मेरा दे साईं ओ बख्शिशां दे दाते जिस दरबार विच ऐसे महापुरख गुरु के सिख अजप्पा जाप करन वाले श्वास श्वास सिमरन करन वाले फिर तेरे एक इशारे ते अपना सब कुछ वार देन वाले गुर सिख जुड़े बैठे होन उत्थे मेरे वर्गे पापी नू भी था है। मैं तो बड़ी नीच जाति दा हां आख्या तू किस जाति दा है गरीब निवाज सानू लोग कलाल कहिंदे हैं। हजूर ने इस प्रेमी नू अपने गल नाल ला के आख्या के जो गुरु नानक दे दरबार विच आ जांदा है

जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवे ता निर्मल होई। भाई साहब ए नजारा की देख रहे सन, ते फिर आपने लिखिया कि कादरे हरकार गुरु गोविंद सिंह, बेकसारा यार गुरु गोविंद सिंह। ए है हर दी वड्याई, हरी दी वड्याई, हर की वड्याई देखो संतो हर निमाणिया।

जिन्हां ने मेरा प्रभु पाया है, मैं उदी मिन्त करां, उदा तरला करां, उदे चरण पकड़ां, भई मैनू भी दस केड़े रस्ते तुरां ते मेरा मालक।

परम सत्कार कुशासन। सतगुरु जी, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, इस पावन शब्द दे विच उस परमात्मा दे नाम दी सिफत करदे हन, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, सर्व रोग का औखद नाम, सारे रोगां दा दारू वाहेगुरु दा नाम है। पर ए नाम दा दारू उन्हां नूं मिलदा जिहड़े नाम नाल जुड़दे हन। अरदास करदे हां, हुण अरदास कीती ते हुणे ही मन विच ख्याल आ जांदा जो हुणे कीता हुणे मिल जावे। अरदास कीती ते नाल ही फल दी इच्छा, लेकिन कुछ मन जुड़े, कोई बाणी दा शब्द मन दे अंदर वसे, हुण दवाई दा असर भी ताही होंदा है ना जे दवाई खाई। दवाई लैके आ गए, डाक्टर कोल गए, डाक्टर ने दस दिता तेनू ए बीमारी है, ए दवाई लै, इस नू खा, आराम आ जाएगा। डाक्टर कोल भी चले गए, अपने आप नू दिखा भी दिता, दवाई भी खरीद ली, घर आ गए, दवाई लिया के बारी विच रख दिती, आप मंजे ते लम्मे पै गए। कोई हाल पुछन आया, की हाल है, ते मंजी ते पिया लम्मा बंदा ए आखे कि कोई फर्क नहीं पिया। डाक्टर कोल भी गया, डाक्टर ने दवाई भी दिती पर आराम कोई नहीं आया। हुण पुछे ए, दवाई ते खाती नहीं, आराम कित्थों आवेगा? आखो सतनाम श्री वाहे। गुरु घर ते आए, अरदास भी कीती, करवाई भी, लेकिन उपदेश ते मन विच वसाया ही कोई नहीं, ती असर किवें होवेगा? आखो सतनाम श्री वाहे। बाणी नाल ते मन जोड़िया ही नहीं, ते दुख किवें दूर होवे? दवाई खाद्य बगैर आराम नहीं, खावांगे ते आराम आवेगा, ते जे बाणी मन विच वसेगी ते ताही दुखां दा नाश होवेगा। इधर अरदास कीती ते नाल ही सोचिया बस हुण सब कुछ मिल जाए, ये सोच बड़ी माड़ी है। अरदास गुरु सुनदा है, पर घटो घट सानू ये तो चाहिए है ना कि जिद कोल कुछ लैना उहदे नाल मन ते जोड़िए, उहदी बाणी ते मन विच वसाईए। आम लोकी ये सोचते ने, तीर्थ यात्रा ते जाओ, एक बारी इशनान कर लो ते सारे पाप खत्म हो जांदे, पर गुरु साहब जी कहंदे ने नहीं, मिले जे तीर्थ नातिया डड्डा जलवासी। जे तीर्थ ते नहाण दे नाल ही सारा कुछ मिल जांदा है, फिर मच्छियां डड्डू जिहड़े पानी विच रहिंदे ने इह मुक्त क्यों ना हो गए? सानू तीर्थां ते जाण दा ते पता है, पर जाना किस तरह है इह नहीं पता, नहाना किस तरह है इह भी नहीं पता। साहब जी उपदेश करते हैं, काया अंदर अमृत सर साचा,
ਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਚਾ ਮਨ ਨਾਵੈ ਪਾਏ ਸੁਭਾਈ ਹੈ। ਨਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਰੀਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇ, ਮਨ ਨਾਵੈ। ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾਤਾ, ਭਾਵ ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨਾਵੈ ਪਾਏ ਸੁਭਾਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੇ ਬਗੈਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ

वाणी सवाल है और जवाब है। दुखां नूं दूर करन वाला नाम है पर किस तरह आठ पहर आराधी अठे पहर उदी आराधना करिए उदे नाल मन जोड़िए ते दुखां दा नास होवेगा। डाक्टर भी कह दिंदा है ना दवाई ते दित्ती है ए ना होवे कि दो खुराकां खा के ते फिर छड्ड देवे कि थोड़ा जिहा आराम ते आ गया है हुण दवाई दी की लोड़ है। दवाई खाई जानी है जदू तक पूरी तरह आराम नहीं आता। एक बार करो रसना पवित्र प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अज वो पवित्र दिहाड़ा जिस दिन अठवें पातशाह गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज ने इस संसार ते अवतार लिया। आओ सारे प्यार नाल एक बारी जपो जो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कितनी श्रद्धा भावना दे नाल आप लिखते हैं श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। जिन्हां नूं देखण दे नाल ही दुखां दा नाश हो जांदा है। अठवें बाला प्रीतम गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज गुरुगद्दी ते बैठे संगतां दे सद्दे ते गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज दिल्ली वल चले। दिल्ली जांदे होए कई जगह ठहरदे संगतां नूं उपदेश करदे। हरियाणे दे विच पंजोखड़ा नाम दा एक स्थान है जिथे गुरु हर कृष्ण साहब जी आके ठहरे। बड़ी बड़ी दूरों संगतां आन लगियां। इसे पंजोखड़े जिते होर संगतां आईयां एक लाल चंद नाम दा पंडित भी आया। पंजोखड़ा जिथे गुरु ने चरण पाए ते पंजोखड़ा साहब बन गया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। लाल चंद दर्शन करन आया गुरु हर कृष्ण साहब नूं देखिया

संसार दे अंदर बोलना है पर गुरु की मत द्वारा। हजूर गरीब नवाज साहब सचे पातशाह ने बड़ा सुंदर फरमान कीता है।

श्री गुरु गोविंद सिंह कर करना पाए भले मग चारो वरना जेड़ा सिख अपने गुरु का शुकराना अदा नहीं करता भाई साहब आखते ने उस वर्गा नीच ते अकृत कण दुनिया ते नहीं मिलेगा। कलगीधर पातशाह जी ने तैनू कीड़े तो पातशाह बनाया किन्ने उपकार हन तेरे उत्ते ऐ गुरसिख कदी तू कलगीधर पातशाह जी का शुकराना अदा कीता है। अज गुरु रामदास अपने गुरु का शुकराना अदा कर रहे हैं अपने आप नूं कीड़ा दस रहे हैं तू कितना कुछ शुकराना अदा करना है। हजूर आखदे ने भाई साहब भाई संतोख सिंह जी

दर्श तुम्हारा जिन प्रीत लाई सो जानता हमारे मन चितर बहुत प्यारा हो बुल बलहारी गुर आपने जिन बिछड़े

मत निर्गुण हम मेले कबहू अपनी कृपा दा हमरे अवगुण बहुत बहुत है बहु बार बार हर गणत न आवे तू गुणवंता हर हर दयाल हर आपे बख्श ले हर भावे हम अपराधी राखे गुरु संगति

जीवा नानक नाम महारस मीठा अंदिन मन पुस्तक करया करो भाई गुरु जी पुस्तक मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल वसना अमृत पियो सदा सुहेला पुस्तक गुरु चंगा कर दिता है ना ओदे विच भी रह के धन गुरु नानक कहते जी वाहेगुरु ने पुत्र की दात दी है पुत्र नाल भी प्यार करो पर ओने नाल प्यार जरूर करो जिन्हें पुत्र बख्शिया है आखिर जी गुरु बाबा जी कह लगे निंदा करनी है अपनी करो उस्तुत करनी है गुरु दी उस्तुत करो ये गुरुमुखता है ये गुरुमुख दी चाहिए तो प्यारे साध संगत यह वचन ना बोलिए जिदे नाल किसी का मन दुख जाए फरीद जी ने कहा सब का मन मालिक ठाहण मूल मचांगवा जे तो प्रिया जी सिके तो न थी गुरु नानक दास जी जेदा गुरु इतना मिठा हो सिख तो कदे नहीं तोड़ना ना प्यार भरे बचन चंगे वचन करो भाई चंगयाई दुनिया में वंडनी सिख दी है ड्यूटी ड्यूटी है आप जपो अपने धाम की।

निर्मूल कीता आनंद गुणी गईरा अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी मगाने के इस मूल वस्तु दे ना मूल बन इस वस्तु का मूल बन पर उन्होंने कीर्तन का पूरा नाम प्राप्त नहीं जिन्होंने कीर्तन नू रबी दास समझ के इसका आदर सत्कार किया है मरदानिया उन्होंने चोरियां मालिक पर मरदानिया यह की है महाराज एक सौ रुपये दिखा है अरुण कहने लगे आप की करनी है मरदाने जा वापस दे महाराज हूं बना के मरदाने ने किया सदगुरु मसा मसा माया का मूह वेखे है तो तुम कहते हो वापस अरुण कहने लगे मरदानिया आप किसे चुकी फिरानी मरदाने ने कहा महाराज तुम थोड़ा चुकनी मरदाना आप ही चुकी फिरेगा इतने जाओगे दो बजे कीर्तन सुनावे हम थानू कदे नहीं खवागा महाराज भुख लगी अरे वो कह लगे जी मरदानी अभी मालिक के हुक्म में जिथे जावे मालिक आपे प्रबंध करेगा वापस दे पल्ले चू न बंदे पंछी ते दरवेश और जिन्हों तकवा रब का तिना रिजिक गिरी गांठनी बांधते जमे देवता खाए गोविंद ताके पीछे गिरे मत भूखे दे जाए एक सौ रुपये की थैली वापस दिखती सात राज अंदर होर प्यार आया नौकर मुंह लाया धक्का कोई रबी दूर आया है और ये सौ सौ के मन धरे है प्रसादे का थाल परोस लै मठियाई भी रख लै दुध का दरबार भी भर लै इतना रुमाल पा के तू जा दे मैं दुकान बंद करके आऊंगा आप उस दादे के दर्शन करना चाहता अगर कब पहुंच गए सर्वा दिन के पदार्था का थाल रखिया मथा टेकिया हजूर ने अमीर दृष्टि न तकिया सिर को नजर करम सिरकार नानक नदरी अगर कहिए चोरियों पर उठिया मस्ती बैठा चाहते हैं इधरों सार सराय भी आए हजूर के दर्शन किए मन खरे हाथ जोड़ के किया गरीब नवाज दुनिया को उतारने वाले दुनिया को दाता देने वाले मेरी झोली की है हजूर कह लगे सार सराय की चाहना है साक्षा दुनिया भी दाता सारी है हीरे दान पन्ने फ्राई अंदौल सोना चांदी सब कुछ है पर गरीब नवाज सब कुछ होंगे अजय मन का खप्पा पूरा नहीं होया खुद ही बने मन नहीं हो गया मन संतुष्ट नहीं हो मन तो संतुष्टि नहीं हजूर कह लगे हां सारसराय मन का भोजन हो रहा है मन ही नाल नहीं रहना मंत्र मन पदार्था नाल नहीं रहना गरीब नवाज फिर करो कृपा हजूर ने सोचिया जरा तकिए अंदरों बोलता है कि बाहर हजूर कहने लगे सारसराय तू देरी नाल आया है जेडी दात सी ना वो तेरा नौकर है महाराज फिर मैं हजूर कहने लगे जे तो भी दात लेनी है तो नौकर के चरणा से है ऐसी कसौटी इम्तहान देखना से भी अंदर निवरता लैके होंगे तभी पर सारसराय का जरा मन रूपी चोलिया सी वो बिल्कुल सुखैल अंदर शरदा से प्यार सी रो पिया हरी परिवार मेरा बच्चा है पर जे तुसी आखो तो मैं तुहाडे कुत्तिया ने पैर च मसा सकिया तो दास भक्त जेदे नाल तेरे मन भी तुर दूर हो हजूर ने बस पीती सारसराय जरा नेड़े हो दात मिलन लगी है तुसी भी मन कर दी गिरे हो जाए बखेश होने लगी है हजूर ने सारसराय के सिर से देर प्रयास रखिया अभी उसकी चीज नाल तकिया देखिया सारसराय जब सतनाम कर हुक्म मस्त का हथ हरिचो मार करिया बड़िया सह सुखे नाम नाम की दात जो जो सारसराय सिमरन नाल जुड़ता है त्यों त्यों मन सुखी हो जाए सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तोरे तो सीमा मेरे सतगुरु तो अज सारसराय दोलियां कर दिखाई मेरे सतगुरु नानक ने क्यों ना भरे अज खास पूर्व माशी का दिन आखो स्थिति भरे सारसराय दोलियां भरिया गई थोड़े उत्ते क्यों बचे उत्ते गर्मी सूरज की किरण जिथे जाएगी हनेरे को दूर करती जाएगी गुरु की मेह जिथे जाएगी ढोलियों पर तो आओ प्यारी आप अनुभव करें।
सर्वत्र माई साई जो अमृत ले रही है।